0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: बर्जर पेन से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
0: बर्जर पेन्स

0: रंग बहार रंग बहार
1: वर्ज संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: वर्ज पेन से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि
2: घर रंगाओ खुशी बनाओ
1: उपहार जित्ने अवसर पाओ
0: वर्ज पेन्स

0: छ।
1: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विनोद तुलासन, डाक्टर वन्दना श्रेष्ठ।
0: हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर यज्ञमान साक्य, डाक्टर प्रवीण थापा, डाक्टर सुभाष गुरुङ।
2: जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपी सर्जन डाक्टर नरेन्द्र विक्रम गुरुङ, डाक्टर देवेन्द्र श्रेष्ठ।
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर डेला सिंह जोशी, डाक्टर चुम्माया पोन।
1: मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर तेज बहादुर गुरुङ।
0: क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि शेरचन, फिजिसियन तथा पेट कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास अधिकारी।
1: पेट कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर शंकर बराल।
0: युरोलोजिस्ट तथा मृगौला रोग प्रत्यारोपण सर्जन डाक्टर प्रकाश छेत्री। मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर जुजुराज श्रेष्ठ। नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर मानकाजी थापा मगर। प्लास्टिक सर्जन डाक्टर पीयूष गिरी। छाला विज्ञान भेनेरियोलोजी तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर अस्मिता वाग्ले। नाक कान घाँटी तथा थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास गुरुङ। कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्ट डाक्टर मनीष किरण श्रेष्ठ, डाक्टर सुमिरन श्रेष्ठ। कन्सल्टेन्ट एनेस्थोसियोलोजिस्ट डाक्टर भूपेन्द्र कुमार तुलाचन, डाक्टर विशाल गुरुङ। कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर अनुमल पौडेल। वार्ड आईसीयू एनआईसीयू जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी सेवा, पोस्ट अप सेवा, फिजियोथेरापी, इन्डोस्कोपी, क्रोनोस्कोपी, इको, टीएमटी, हल्चर, पीएफटी, युरोफ्लोमेट्री, डायलिसिस सेवा र आँखा उपचार सेवा। 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा साथै अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा सेवा प्रदान गरिएको जानकारी गराउँदछौ।
1: 24 घण्टा प्याथोलोजी सेवा उपलब्ध छ। विस्तृत जानकारीको लागि पद्मश्री हस्पिटल एन्ड एलआई फाइन्सेस प्राली, पोखरा 9 न्यू रोड, फोन 061 590 162, 590 163।

में सही पहचान करो, स्वास्थ्य जोगाओ, पैसा बचाओ। थप जानकारी के लागि फेवा थ्रीटी एमआरआई एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पोखरा 9 नागढुंगा, फोन 061-591-728, मोबाइल 9856-027-29।

होल बॉडी कैंसर स्क्रीनिंग पेट तथा आन्द्रा को विकिरण रहित एमआरआई सेवा नियमित उपलब्ध रहेको छ। साधारण एमआरआई होइन, थ्रीटी एमआरआई नै गराऊ, समयमै सही पहिचान गरौ, स्वास्थ्य जोगाऊ, पैसा बचाऊ। थप जानकारीका लागि फेवा थ्रीटी एमआरआई एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर पोखरा 9 नागढुङ्गा, फोन 061-591-728, मोबाइल 9560-027-29।